अधूरे प्रभु, मदद कर, और ऐसे तेरे करीब आने के लिए मदद कर, तेरी महिमा करने के लिए मदद कर। यस प्रभु।

करूं इस प्रभु, हम तेरी सचता करते। तू ही मार्ग है, तू ही सच्चा सत्य है, तू ही हमारे जीवन की रोटी है, तू ही सब कुछ है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, तेरी सचता करते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते। तू हमारा ही है प्रभु, हमारा जीवन में घोंसला देने वाला परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद। तू सब कुछ कर सकता है प्रभु, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी युक्ति, तेरी युक्ति कोई भी विफल नहीं होगी। जो सब तू तूने युक्ति बनाई है हमारे लिए, वो कभी विफल नहीं होगी प्रभु। सब कुछ कर सकता है तू प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। सब कुछ

रिस प्रभु, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू सब कुछ कर सकता है प्रभु। तेरी युक्ति कभी भी विफल नहीं होगी प्रभु। जो निर्णय को तू बदल सकता है प्रभु, जो तूने हमारे लिए ठाना है प्रभु, तो पूरा करेगा। यस प्रभु, जीवन भर हम तेरी स्तुति आराधना करें, जीवन भर हम तुझे याद करते रहे, जीवन भर तेरे चरणों पे हम बैठे रहे प्रभु। ऐसा हम प्रार्थना करते प्रभु, जीवन भर तुझे याद करें, तेरी महिमा स्तुति करते रहे प्रभु। धन्यवाद करते इस रात के समय पे प्रभु। यस प्रभु, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। तू हमारे लिए मरा, तू हमारे लिए जी उठा प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते। यस प्रभु, तू विराजमान है, तू ही हमारा आश्रय है प्रभु, तू ही हमारा सब कुछ है प्रभु। यस प्रभु, इस रात के समय तेरा धन्यवाद करते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। तू सबसे ऊपर है प्रभु, जितनी तेरी हम आराधना करें उतनी कम है प्रभु। हम मांगते प्रभु, तू आदर के योग्य, तू स्तुति के योग्य, तू प्रशंसा के योग्य है प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस।

हो यस प्रभु, स्तुति आराधना तेरी हो। हम तुझसे प्रभु प्रार्थना करते तो हम तेरे सिंहासन के पास आते। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, तेरे नाम को ऊंचा उठाते, तेरी महिमा करते, हमें तेरे करीब आने के लिए मदद कर। तेरे सिंहासन के पास आते, तेरी महिमा करते, तेरी स्तुति करते प्रभु, क्योंकि तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू हर दिन हमें चलाता है, हर दिन हमें संभालता है, हर दिन हमारे जीवनों में कार्य करता है। इस रात के समय हम प्रार्थना करते हैं, हमारे गोस्पल मिनिस्ट्री में प्रभु आपका सभी का स्वागत करते हैं। जितने लोग प्रभु जुड़ने पा रहे उन सभी को जुड़ने के लिए मदद कर। तेरी बेदारी, तेरी सामर्थ की शक्ति सबको छू लेने दे प्रभु, सबके ऊपर तेरा अनुग्रह आने दे। और हम प्रार्थना करते जो बीमार पड़े हैं, कई लोग कैंसर से पीड़ा में पड़े हैं, कई लोगों को बीमारी की वजह से डेंगू की बीमारी फैल रही है, न जाने कई लोग कितने लोग कैंसर से पीड़ा में है, बंधन में है, बीमारी में पड़े हैं। ऐसे सब बातों को हम तेरे सामने रखते, तू ही हमारा प्रभु सब कुछ है, तू असंभव को संभव करने वाला। कई लोग बीमारी में अटके हुए, बंधन में पड़े हैं, ऐसे हालातों में सबको तो बाहर निकाल। हमारे हर एक कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करते, तू ताबा ले प्रभु, हर परिवार में तेरी शांति मांगते, तेरा आशीर्वाद मांगते। तू ही हमें आशीर्वाद दे सकता है प्रभु, हमारे लोगों के ऊपर, हमारे कलीसियाओं के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, मेरे पति के ऊपर, मेरे ऊपर, मेरी बहनों के ऊपर। ऐसा आज हम प्रार्थना करते, हम सबसे प्यार करते प्रभु, हम किसी को छोड़ना नहीं चाहते। तूने तो यही हमें सिखाया है कि हम दूसरे से प्यार करें, एकता में रहे, तेरे राज्य में बलवंत होते जाए प्रभु। आज हम मांगते हमारे हर एक विषय में जितनी कलीसिया है, सभी कलीसिया का ताबा तेरे हाथ में देते हैं। आज कलीसिया में के अंदर प्रेम की कमी हो रही है, एक दूसरे को मदद नहीं कर पा रहे, एक दूसरे के लिए चुगली कर रहे, ऐसी सारी बातें हम तोड़ते प्रभु आज। और तेरे पवित्र लहू हमारे परिवार के ऊपर, हमारे क्रिश्चियन भाई बहन के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारे नेशन के ऊपर हम घोषित करते, तेरे लहू से हमें सभी को ढांप दे। सहायता कर प्रभु, मदद कर, तेरे अनुग्रह में भी बड़ा, तेरे राज्य में बड़ा। और हम तुझसे दूर नहीं प्रभु, तेरे करीब हम आ जाए, तेरी प्रशंसा करने वाले बने, तेरा तेरा अभिषेक हमारे ऊपर आने दे। ऐसे हम प्रार्थना करते हमारे सभी कलीसिया जो ठंडी हो रही है, रुकावट आ रही है, लोग दूर भाग रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते तू प्रभु सभी को एकत्रित ले आ, हर एक के मन में शांति भर दे, गड़बड़ी की आत्मा निकाल दे, दुष्टाई की आत्मा निकाल दे, बुरी कल्पना निकाल दे प्रभु, नम्र होकर तेरे करीब आने के लिए मौका दे। ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु, सहायता कर, मदद कर। उसी तरह मंजुमा और उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, उनकी बेटी, उनके सभी घर में जितने भी लोग हैं सबको याद करते, आशीर्वादित कर और हमें मजबूत कर, किस तरह हम तेरे राज्य में बढ़ सकते, किस तरह तुझे लेकर हम चल सकते प्रभु। ऐसा सामर्थ का आत्मा हमें दे प्रभु, हमारे परिवार में शांति बनाए रख, हमारे परिवार से कोई भी बीमारी में नहीं मरेगा। आज हमने सुना एक जवान बच्चा फिर से एक मर गया प्रभु, उस परिवार का आज प्रभु सेरेमनी हुई। आज हम मांगते प्रभु जवान बच्चों को संभालना प्रभु, कोई भी जवानों की डेथ मत होने दे प्रभु। परिवार से कई लोग मर रहे प्रभु, कलीसिया से भी कई जवान जवानों की मृत्यु होने हो रही है प्रभु। हम मांगते शैतान की कोई भी योजना सफल होने मत दे प्रभु,
हम मांगते, आशीर्वाद कर, सब जवानों को हम तेरे हाथ में देते, सब परिवार को तेरे हाथ में देते, हमारे जितने क्रिश्चियन परिवार है सभी को मजबूत रख, अच्छी हेल्थ दे प्रभु। तेरा वचन कहा गया है कि दीर्घास का जीवन में दूंगा, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे बेटियों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे सभी कलीसिया के ऊपर, हमारे सभी पासवानों को भी तेरे हाथ में देते, हर एक बच्चे बच्चे को तेरे प्रार्थना करते, हर एक जितने बीमार कैंसर से पड़े, ऐसे हर बीमारी के ऊपर हम घोषणा करते, तेरे कोड़े खाने से सब चंगे हो गए, तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ, तेरी चंगाई की सामर्थ हर एक के अंदर बह रही है प्रभु, ऐसा हम घोषित करते, कोई भी बीमारी में नहीं मरेगा, कोई भी प्रभु हार्ट अटैक से नहीं मरेगा, ना ही कोई ब्लड कैंसर से मरेगा प्रभु, ऐसे हम घोषणा करते प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु, हमें मदद कर, मेरा पति का ताबा तेरे हाथ में देते, हमारे अंदर जो भी प्रभु रुकावट आ रही है, थोड़े गुस्सेपन की आत्मा आ रही है, सारी दूर कर दे और आशीर्वादित कर प्रभु। मेरी फ्रेंड सोनल का भी ताबा तेरे हाथ में देती हूँ, उसको आशीषित कर। पुनः मेरी फ्रेंड पूनम के जीवन में भी कार्य कर, वो अपने जॉब से लेकर बहुत दुखी है, निराश है, तो उसकी दूर कर, उसके स्कूल में उसको प्रभु ईमानदारी से विश्वास के साथ काम करने के लिए मदद कर, और उसकी पोजीशन बढ़ने के लिए मदद कर, उसको नीचे नहीं प्रभु तो ऊंचा उठाएगा। तेरा वचन कहता है मैं जिसे प्रेम करता हूँ उसको मैं कभी गिराऊंगा नहीं, उसको ऊंचा उठाऊंगा, ऐसा आज हम मांगते प्रभु, आशीर्वाद कर, मदद कर, तेरे अनुग्रह में सबको बढ़ा, सबके जीवन में कार्य कर, हमारे मनोहर भाई के जीवन में भी कार्य कर, उसकी बेटी के जीवन में कार्य कर, मंजू माँ की बेटी को भी आशीर्वादित कर, इस साल बच्चे होने के लिए मदद कर, जितनी बेटियां बांझ पड़ी है उस सब बेटियों के जीवन में कार्य कर, हम विश्वास करते और आज इस समय विश्वास से प्रार्थना करते, विश्वास और तेरी सामर्थ्य हमारे अंदर आने दे, जब विश्वास और सामर्थ्य एक साथ मिल जाता है प्रभु तो उधर तेरा कार्य शुरू होता है प्रभु, ऐसा हम घोषित करते प्रभु, मांगते प्रभु सहायता कर, कहीं भूल चूक हो गई है, ये हमारे अंदर कुछ गुस्सा आ रहा है या कुछ हमारे स्वभाव बदल रहे हैं, तो हमें नम्र बना प्रभु, चुप रहने में मदद कर, और प्रभु हम्बल्स होकर आगे बढ़ने के लिए मदद कर, परिवार में शांति बनाए रख, प्रेम बनाए रख प्रभु, ऐसे में मांगते प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती। आइए हम पढ़ेंगे वचन, हम निकालेंगे दानियल का 12वां अध्याय, उसमें कुछ वचनों से हम देखेंगे किस तरह दानियल से प्रभु ने बातें की, किस तरह उसको हर बंधन से छुड़ाया। आज हम देखेंगे दानियल 12 और कुछ वचनों को हम देखेंगे। निकाल से दानियल 12। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दानियल बहुत विश्वास योग्य था, वो प्रार्थना में विश्वास योग्य था, जब वो विश्वास से प्रार्थना करता था उसको बहुत प्रभु मदद करता भी था। आज देखेंगे इस तरह दानियल के जीवन में परमेश्वर ने बातें की। हम देखेंगे दानियल का 12 से नहीं सॉरी 10 से 12 से दानियल 10 उसमें 12 से पढ़ेंगे। पढ़ते परमेश्वर दानियल को हमेशा दर्शन से बातें करता था। यहाँ देखो 12 में क्या कहा गया, 12:10 का 12 हम पढ़ते। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि मैं पहले ही दिन जब मैं तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया,
उसी उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। देखो यहाँ हम देख सकते, जब हम उसका 11 पढ़ते 10 पढ़ते, किसी ने अपने हाथ में मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों की हथेलियों से थर थराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, ए दानियल, ये अति प्रिय पुरुष जो वचन में तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा हो गया, परंतु थर थरता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, ए दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समस्त ने बुझने के लिए मन लगाया, अपने परमेश्वर के सामने अपने दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। देखो कई बार हम परमेश्वर से बातें करते हैं, प्रभु दर्शन के दरमियान हमसे बातें करता है। कई बार हम वचनों से बातें करते हैं, कभी हमें सपनों के द्वारा बातें, और दानियल के पास बहुत सारे सपने होते थे और उस सपनों में दर्शन देखा करता था। इधर परमेश्वर ने उसे दर्शन में बातें की, उसके हर तकलीफ में दानियल कितनी उसको सिंह के गजड़े में रखा गया था, लेकिन फिर भी उसको परमेश्वर को जब वो पुकारता था तो उसी दिन परमेश्वर उसको छुड़ा भी लेता था। इस इधर दानियल से ही परमेश्वर ने बातें की। दानियल ने अपने स्वर्गदूत परमेश्वर ने दानियल के लिए स्वर्गदूतों को भेजा, उसको उस सिंह के गजड़े से भी बाहर निकाला। जब ही उसके दोस्त अग्नि में भट्टी में डाले गए थे, उधर से भी परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला। आज हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, और हम अपने दिन को हमेशा नम्र बना के रखना है। कई बार हम लोग गुस्सा डर डर ऐसे करते हैं, हम अपने आशीष को खोते हैं, लेकिन आज परमेश्वर जिस तरह दानियल को प्रभु ने आशीषित किया, आज प्रभु उसी तरह तुम्हें और मुझे भी प्रभु आशीषित करना चाहते हैं। हम 13वां वचन पढ़ते, उसमें फारस के राज्य प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा, परंतु मिकाएल ने जो मुख्य प्रधानों में से है वो मेरी सहायता के लिए आया, इसीलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और जब मैं तुझे समझाने आया हूँ, अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। देखो कई बार हम दर्शन देखते हैं, स्वप्न देखते हैं और ठान लेते हैं कि यह मेरे जीवन में पूरा होगा, लेकिन कभी कभी दर्शन अब पड़ता है तो कई सालों के बाद पूरा होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन जब दानियल को दर्शन देखने का और उसको अर्थ समझने का भी परमेश्वर ने आशीष दिया था, आज प्रभु तुम्हें हमें दर्शन के द्वारा हमसे बातें करना चाहते हैं, हमें दर्शन के रहस्य समझने को चाहते हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते कि प्रभु क्या हमसे कहना चाहते हैं, प्रभु की इच्छा है कि हम प्रभु के राज्य में बढ़ते जाए और लवलीन होते जाए और प्रभु को प्रसन्न करने वाले बन जाए, ऐसी प्रभु की इच्छा है। इसलिए इस समय हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें तेरे दर्शन से खोजी बना। दाविद कहता है कि मैं परमेश्वर के दर्शन की खोज होऊंगा, और यहाँ दानियल परमेश्वर के दर्शन का खोजी है, और परमेश्वर उसको दर्शन के द्वारे बताता है, स्वर्गदूतों को भेजकर उसको उसके लिए मदद का हाथ भेजता है। जब सच्ची में परमेश्वर के ऊपर ध्यान करते तो प्रभु हमें दर्शन से बातें भी करता है, और हमारे जीवन में दर्शन देकर हमें उस रास्ते पर लेके भी चलता है। कई बार वो हमें बाहर भी निकालते हैं, कई बार हमारे लिए रास्ते खोल देते हैं। ऐसा आज का वचन है, और एक वचन हम उसमें से पढ़ेंगे।
ऐसा का 57 का 15 वचन पढ़ेंगे।

क्योंकि इधर देखो, इधर इजाया को भी प्रभु सहायता मदद करता है, क्योंकि जो महान उत्तम सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वो यो कहता है कि मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को मैं हर्षित करूं। देखो परमेश्वर क्या कहते हैं, जो खेदित है और नम्र लोग है उनको मैं क्या करूंगा, उनके संग रहूंगा, उनको मैं स्थिर रखूंगा, उनके घर उनको मैं उनके निवास स्थान करूंगा, उसके संग में रहूंगा। खेदित लोगों को, नम्र लोगों को, उनके मन को मैं हर्षित करूंगा। जिनका मन दुखी हुआ है, जिनका मन निराश हुआ है, उनको प्रभु क्या करेगा, आनंदित करेगा उनके रू। और मैं सदा मुकदमा लड़ता रहूंगा और सर्वदा क्रोधित नहीं रहूंगा, क्रोधित रहूंगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए और मेरे जीव के सामने मूर्छित हो जाते। कई बार हम मूर्छित हो जाते, दुखी हो जाते, प्रभु को दुख देते, लेकिन एक जगह प्रभु ये भी कहता है कि मैं उनमें से बाहर निकलूंगा, तो मूर्छित होने नहीं दूंगा, दुखी होने नहीं दूंगा। इसलिए परमेश्वर से मैं नम्र होकर हमारे टूटे हुए हृदय को लेकर प्रभु के पास जाना है। दाविद कहते हैं, मैं टूटे हुए बलिदान दूंगा, टूटे अपना तोड़ कर हृदय परमेश्वर के सामने बलिदान देना है, उसकी आराधना करने, उसके वचन को पढ़ना है, उसकी स्तुति करने, उसके भावता हुआ उसको बलिदान चढ़ाना है, ऐसा उसका वचन कहता है। और एक वचन देखते प्रार्थना में जाते, उसी में भजन संहिता 51:17 भी यही कहता है। चरम भजन संहिता का 51 का निकालते, उधर भी परमेश्वर दाविद राजा बात करते हैं कि परमेश्वर के वो टूटे हृदय के सर प्रभु के सम्मुख जाता है, तब प्रभु उसकी सुनता है, उसको ताड़ना देता है, उसको संभालता है। और आज प्रभु तुम्हें और हमें भी यही कहते हैं, जब टूटे हुए हृदय के साथ प्रभु के पास आते हैं, हमारी बातें उसको बताते हम, तो प्रभु हमारी सुनता है, प्रभु हमारी सुनता है। देखो एक वचन पढ़ते हम, 51:17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, और परमेश्वर तो टूटे पिसे को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर टूटे हुए को कभी तुच्छ नहीं जानते, दुखों को कभी तुच्छ नहीं जानते, वे बिचारियों को तुच्छ नहीं जान, उनकी पाप याद भी नहीं की। आज प्रभु तुम्हें और हमें भी तुच्छ नहीं जानता है, हम हमारे भलाई के लिए कुछ हमें लिए मार्गदर्शन कर। कई बार हमको हमारा मन दुखी होता है, हम टूट जाते, निराश हो जाते, लेकिन परमेश्वर कहते हैं निराश मत हो, मेरे पास आ। हमें सब कुछ प्रभु को बताना है, हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या करने वाले, क्या नहीं करने वाले, सब कुछ प्रभु के सामने लेकर आने, ऐसा इसका वचन कहते हैं। धन्यवाद प्रभु, इस वचनों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जिस तरह तूने दानियल से बातें की, दानियल को छुड़ाया, एजहे को छुड़ाया, एजहे को कहा मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे हर बंधन से छुड़ाऊंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। आज परमेश्वर हमारी सहायता करना चाहता है, हमारे हर बंधन से छुड़ाना चाहता है, हमारे बीमारी से मैं आजाद करना चाहता है। आज हम मांगते प्रभु सहायता कर, मदद कर, हमारे सभी लोगों को तेरे हाथ में देते के साथ बातें कर प्रभु, सबको दर्शन दिखा जैसे दानियल को दिखाया, उसको तूने आगे आगो की भट्टी से निकाला, आग के पानी से निकाला,
आज मैं ही मांग थी प्रभु, आज हम भी कहीं ना कहीं ऐसे भट्टी में पड़े हुए, ऐसे अंधकार में पड़े हुए, उधर से हमें बाहर, हमें कोई भी हमारी परिस्थिति से बाहर नहीं निकल सकता प्रभु, लेकिन आज तेरे पास आते ताकि तू हमें मदद कर सके, तू हमें शुद्ध कर सके प्रभु, ऐसे मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। निर्मला सिस्टर को भी तेरे हाथ में देते, वो जो भी ट्रैवल कर रही है उसको मदद कर, आशीषित कर, और समय अनुसार आने के लिए मदद कर, ऐसे हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड मैनुअल भाई, प्रेज द लॉर्ड, नॉट लिस्ट, प्रेज द लॉर्ड।